ओम चक्र मुखाय विद्महे हम सर्वधाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।

ओम चतुर्मुखाय विद्महे हम सर्वथाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।